नट नारायण राग दे अधीन गुरु ग्रंथ साहब विच एक होर राग स्वरूप मिलता है, वो है नट। असल विच नट नारायण राग नट दी ही एक प्रकार है, पर दोनों राग भिन्न अते स्वतंत्र राग हैं। जिथे गुरुदेव ने नट नारायण की वरतों कीती है, उत्थे स्पष्ट तौर पर नट नारायण महला चौथा पंजवा आदि लिखा है। नट नारायण का स्वभाव है काला, ये काल मिटदी है ना दे अमृत जल नाल। नाम नाल मन थिर हो जाएगा, नटखट नहीं रहेगा। नट नारायण दी थां नर नारायण ले लवेगा। खिन खिन नर नारायण गावे है, मुख बोले है नर नर हरे। मन दी स्थिरता ले नाम अमृत जल है, बाणी दे सार विच जिस नाल निस्तारा होना है। बाणी गुरु गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कह सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निस्तारे। इस राग दे आरोह विच सत्ते सुर अते अवरोह विच धैवत अते गंधार वकल ढंग नाल लगदे हन। दोनों मध्यम लगदे हन। इस दे गौंग दा समय राग दा दूसरा पहर है। राग नट नारायण विच पहला शब्द मेरे मन सेब सफल हर काल, ले गुरपग रेन रवाल। गुरु रामदास जी पातशाह जी दी रचना। इस शब्द दा कीर्तन कर रहे हन भाई परमजोत सिंह जी। दूजा शब्द सरवण करो भाई हरिंदर सिंह हरचरण सिंह जी फक्कर। गुरु अर्जन देव जी दी रचना है उलाह नू मैं काहू न दियो। पहला शब्द मेरे मन सेव सफल हर काल।

उपाध्याय धन गुरु अमरदास महाराज अपने इस पवित्र शब्द विच कहंदे ने राम राम करता सब जग फिरे।

राम राम करदे पर सारियां नूं ओ राम मिलदा नहीं। क्यों? सिर्फ राम राम कहण दे नाल राम नहीं मिलदा, ओदू मिलदा जदू मनो कहा जाए। राम राम कह लिया, सारा दिन झूठ बोलिया, ठगियां कीतियां, ओ राम किवें मिले? राम राम करन दा मतलब ए कि कोई माड़ा काम नहीं करना, किसे नूं सताना नहीं, किसे नाल धोखा नहीं करना, तां ओ राम मिलदा है। नहीं तां कोई फायदा नहीं राम राम कहण दा, जे मन विच सच नहीं, मन जुड़िया नहीं। साहब जी कहिंदे नहीं, कहण नूं ते सारा संसार कहिंदा, पर सारिआं नूं राम थोड़ा मिल जांदा।

आ गोचर अत वड़ा बड़ा वड़ा है अतुल जिन्नू कोई तोड़ नहीं सकता ओदा कोई अंत नहीं पा सकता उस राम कोई तोड़ नहीं सकता कोई ओदी

जाना माथे तिलक मथे दे तिलक ला ले हाथ विच माला फड़ ले ते राम राम कह लिया थोड़ी देर सारा दिन झूठ बोलिया ते समझिया कि हुण बस राम खुश हो गए भगत जी कहंदे ने नहीं।

जद तक मनो नहीं कहते। एक दुध वेचन वाली गुजरी नदी पार करके एक पिंड दुध वेचन आया करती सी। एक दिन वो दुध वेच के जद वापस तुरन लगी ता मंदिर दे विच बहुत सारे लोग बैठे सन ते कथा हो रही सी। मंदिर दा पुजारी कथा कर रहे है कि जेड़ा इंसान राम राम कहंदा है ओ संसार सागर तों पार हो जांदा है। उस गुजरी ने कथा सुनी मन विच ये गल वस गई कि जेड़ा राम राम कहंदा है ओ संसार सागर तों पार हो जांदा है। ए गुजरी कथा सुन के अपने घर नूं वापस मुड़ी जदू नदी पार करन लगी

पर जदू ए नाव दे कोल पहुंची बेड़ी दे कोल ता मन विच सोचदी है कि मंदिर दा पुजारी कह रहा सी जेड़ा इंसान राम राम कहंदा ओ ते संसार सागर तू पार हो जांदा ए ता छोटी जी नदी है जे संसार सागर आदमी राम राम कह के पार हो सकदा है ते मैं राम राम कह के ए नदी क्यों नहीं पार कर सकदी मन विच भरोसा राम ते बजदी राम राम करदी ए नदी दे विच वड़ी ते देखदियां देखदियां तुरदी तुरदी नदी दे अध विचकार चली गई पानी दे उत्ते इस तरह तुरी जांदी है जिवें के लोक धरती ते तुरदे ने और देखदे देखदे आराम आराम कहंदे आ ए नदी पार कर गई हुण जदों आंदी है तां वी राम राम कह के नदी दे उत्ते तुरदी आंदी है जदों वापस जांदी है उदों वी राम राम कहंदी नदी पार कर लैंदी एक दिन मन विच ख्याल आया मैं राम राम कह के नदी पार कर लैनी है पानी उत्ते इस तरह तुरनी है इस तरह तुरनी है पानी उत्ते जिवें लोग धरती ते तुरदे ए राम मैनू मंदिर दे पुजारी ने दस्या है ते क्यों ना उस पुजारी नू घर बुला के ओनू रोटी खुआवा प्रशादा छकावा ओदी सेवा करा गुजरी तैयार होके घरों चल पई उसी तरह राम राम कहंदी नदी पार करके मंदिर जा पहुंची बड़े प्यार नाल कहा पुजारी नू पंडित जी अज चलो मेरे नाल मेरे घर चल के रोटी खाओ प्रशादा छको पंडित जी तैयार हो पे अगे अगे गुजरी ते पिछे पिछे ए पंडित जी चल पे तुरदे तुरदे जद नदी दे कोल आए पंडित जी कहन लगे उस गुजरी नू के बेड़ी नाव ता दूसरे पासे है तू केड़े पासे आ गई है गुजरी कहन लगी पंडित जी बेड़ी दी नाव दी की लोड़ है जद राम राम कह के इंसान संसार सागर तू पार हो सकदा है ते फिर बेड़ी दी की लोड़ है ए नदी ता छोटी है राम राम कह के इथू भी पार हो जावां पंडित जी कहन लगे ए थोड़ी हो सकदा के राम राम कही जाइए ते नदी तू पार हो जावां गुजरी कहन लगी तुसी मेरे पीछे पीछे आओ तुसी ते कदों दे राम राम कहंदे हो मैं ते हुणे कहन लगी हां ते नदी पार कर जानी हां ए कह के राम राम कर दी ए गुजरी नदी दे उते पानी दे उते तुरन लग पई ए देख के राम राम कहंदे पीछे पीछे पंडित जी भी तुर पे जद थोड़ी दूर गए पानी डूंगा सी ते जाके गोते खान लग पे जद डुबन लगे ते उस गुजरी नू कहन लगे ए आप ते मरेगी नाल मैनू भी मारेगी ओ गुजरी ते राम राम कहंदी नदी पार हो गई ते पंडित जी डुबदे डुबदे मसा बचे ते बड़ी मुश्किल दे नाल किनारे ते आके लगे हुण सवाल ए पैदा हुंदा है राम राम ओ गुजरी भी करदी है ओ नदी पार कर गई राम राम ए पंडित भी करदा है पर ए डुबदा डुबदा बचिया
ਕਾਰਨ ਕੀ? ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਹੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਮ ਰਾਮ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨੀ। ਮਿਲਦਾ ਕਿਨੂੰ? ਜਿਹੜਾ ਪਖੰਡ ਨਾ ਕਰੇ ਬਲਕਿ ਮਨੋ ਰਾਮ ਰਾਮ।

उस पुजारी ने ते राम नु खड़ौणा ही समझे, क्योंकि राम नु मन विच नहीं वसाया। उस गुजरी ने राम नु राम समझिया, ओ नदी भी तर गई ते संसार सागर तो भी तर गई। हुण कबीर साहब कहिंदे ने, मैं बौरा हो गया राम दे नाम दे नाल लग के। ओ बौरा नहीं जिन्हू लोग पत्थर मारदे ने।

कि मैं बोरा हूं तो ऐ राम मैं तेरा क्यों लोग जेड़े ने वो मैनू कहंदे ने कबीर बोरा है कबीर बोरा है क्यों इस वास्ते कि ना ये पूजा करदा है ते ना ही ते फुल

कबीर बौरा है, ए कबीर बौरा है, ए पागल हो गया। पर कबीर सब कहते मैनू कोई पागल कब, मैनू कोई बौराना कब, मैनू कोई फर्क नहीं, क्योंकि मेरे मन का दर्द मेरा प्यार मेरा आराम जानता है, मैनू दुनिया की परवाह नहीं।

कसंबे दा रंग कच्चा हुंदा। कपड़े नूं रंग चाड़ो धोवो सारा रंग उतर जांदा। इसे तरह जेड़े लोग रब दे नाम ते लड़दे ने रब नूं वखरा वखरा करके समझदे ने समझो कि उन्हां उत्ते राम दा अल्लाह दा वाहिगुरू दा रंग चढ़े।

रहत बिना न सिख कहावे। रहत बिना जड़ा ना बाणी पड़ी ना अमृत धारी ना रहत च पूरा साहब जी कहंदे सिख किवें हो सकदा। ते रहत तो बिना ओ चोटा खावेगा दुखी होवेगा।

तू भाई जिन्ना मर्जी प्यार कर पर पराई औरत नू अपनी मां समान समझ जिहड़ा ये गल्लां मन्नेगा साहब जी कहंदे ने ओ असल विच रहवान।

परमा वह मच फेर पराया हक खावे पराई निंदिया करे ता गुरु साहब जी कहंदे ने उनू राम उनू वाहगुरु किस तरह मिले कहन नू ते सारा संसार राम राम कहंदा वाहगुरु वाहगुरु कहंदा पर सारिया नू

जुम्बला वह तुम बोल है स्वामी कुदरत कवन हमारी साध संग नानक जस गायो जो प्रभु की अत प्यारी आए प्रभु शरणागति कृपा निध दयाल एक अखर हर मन वस्त एक अखर हर मन वस्त नानक होत निहार कहां बुद्ध प्रभु तुच्छ हमारी वर्ण सके महिमा जो तिहारी हम नसरत कर सिवत तुम्हारी हम नसरत कर सिवत तुम्हारी।

जैसो गुरु उपदेसया मैं तैसो कहया पुकार। कह नानक सुन रे मना कर कीर्तन होए उधार। कल युग में कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिया लाए ध्याना। आप तरह सगले कुल तार हर दरगह पत सिंह जाइंदा।

जिज्ञासु कौन है, सत्संगी कौन है, जड़ा सवाल करता है जाके, हे गुरु हे महापुरशो मैनू दसो, मैं चरासी विच फसया होया हाँ, मैं हनेरे विच फसया होया हाँ, मेरी जिंद दुखां विच फसी हुई है, मैनू दसो कोई रास्ता, ये सवाल करता है।

0: सगल श्रेष्ठ को
1: राजा दुखिया
0: सुखी कैसे होएगा भाई। हर का नाम जपत होए
1: सुखिया,
0: परमेश्वर का नाम जप के ही सुखी हो सकता है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: सो सत संगत, हुण फिर असी सोचते हाँ भी नाम जपना कि सानू नाम जपन ही सुख मिल सकता है। फिर बड़ा औखा है नाम जपना, दुनिया छड़नी पवेगी, संसार का त्याग करना पवेगा। हां संसार का त्याग करना पवेगा, मोह ही दुखां का कारण है। सारे दुखां का कारण मोह है, सारे दुखां का कारण अज्ञान है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: फिर तो भाई बड़ा औखा हो जाएगा, दुनिया छड़ दी, सारी दुनिया किवें छड़ जावांगे, किवें सारी दुनिया जंगल नूं तुर जाएगी। फिर तो असीं जावांगे नहीं गुरुद्वारे, ऐसे साधुओं कित्थे जावांगे। नहीं, गुरु नानक जी ने सत संत कृपा की थी, दुनिया नहीं छड़ाई परंतु दुनिया का मोह छड़ाता। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: बोलो धन गुरु नानक,
1: धन गुरु नानक।
0: दुनिया तो नहीं छड़ाई, योगिया ने दुनिया छड़ाती, बड़े बड़े राजे पर्थरी वर्गे साध संगत उन्होंने कन्ना पाड़ के मुंदरा पवा दतिया, परंतु मन फिर भी शांत ना होए। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: योग दे नाल भी योग सिद्ध आसन 84 ए पी कर रहा, बड़ी आरजा फिर जन्म हर सिंह संग ना
1: गहया।
0: तीर्थां दे बैठ के वेदां दे पाठ कीते, शास्त्रां दे पाठ कीते, बड़ी तरह दी पूजावां कीतियां, फिर भी मन शांत ना। पाठ परिवार वेद विचारियो निमल पहंगम साधे, पंच जना संग ना छोड़ के, अदक अहां बुद्ध बाधे प्यारे, इन विद मिल ना जाई। मैं किए कर्म
1: अनेका,
0: अनेकों ही कर्म कीते, मैं किए कर्म अनेका, हार परे स्वामी के द्वारा दीजे बुद्ध
1: विवेका।
0: बड़े जतन कीते, बड़े तरीके अपनाए, परंतु फिर भी मन शांत न होया। बोलो
1: सतनाम
0: भरथरी योगी श्री नारद जी की उपासना करते हैं, नारद जी की आराधना करते हैं, नारद जी के सुपने विच दर्शन हुए। हां भाई क्या चाहते हो? शांति, मुक्ति, परमेश्वर का मिलाप। 500 साल की मेरी उम्र हो गई है, कितने योग कमाले हैं मैं, रिधियां सिधियां भी प्राप्त हो गई। अजे भी कहते हैं हे नारद,

0: हे नाथ, मैनू कोई ऐसा तरीका दसो। नारद जी ने पता है की कहा? नारद जी ने कहना कीता, हे पार्थर, इसका इलाज मेरे को नहीं है। मैं तेनों एक तरीका दस दिंदा हां, रास्ता दस दिंदा हां। संसार ते गुरु नानक प्रगट हो गए, बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: हे पार्थरी, इधर उधर चोटा खाण की लोड़ नहीं है। दुनिया का मालक दुनिया ते आ गया है, बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: उथे तेन शांति मिलू, तेन सब कुछ मिलू, बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: हे नारद जी, फिर मैनु कोई रास्ता दस दो, कोई ढंग दस दो, उन्हां दा कोई चक्कर चिन्ह दस दो, स्वरूप दस दो, किथे पैदा होए ने ओह। श्री दशमेश मांगू, मैनु दसो, मैं उन्हां दा दर्शन किवें करांगा, मैं उन्हां नू किवें मिलांगा, मैं किवें उन्हां दी शरण विच जावां। कहना कीता, हे पार्थरी, तू इस तरह नहीं मिल सकता। तू उन्हां नू अराध याद कर, बेनतियां कर, अरदासा कर, तेनू आपे ही मिल जाणगे। आके बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: जिहड़ा उत्तम जिज्ञासु हुंदा है, उसनू गुरु खुद ही ढूंढ लैंदा है, बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: जिहड़ा अधिकारी नहीं हुंदा, उहनू दर ते आए नू भी कई बार मोड़ दिंदा है, बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: अण अधिकारी नू तू याद कर, बेनतियां कर। सो वक्त आया, समा आया, ओही पार्थर। होर बहुत सारे योगी गुरु नानक नाल चर्चा को चर्चा करते हैं, सवाल जवाब करते हैं, परंतु पार्थरी सवाल जवाब नहीं करता है, बोलो
1: श्री वाहिगुरु।
0: दुनिया की आदत है, सलाम जवाब दो भैं करे, मुंडो कोथा जाए, ना ही मत्था टेकदा, ना ही शंके करदा, ना ही सवाल जवाब करदा है, दोवें ही काम करदा है, बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: ना ही सेवक, ना ही शंका। सो सत संगत पार्थरी ने सवाल जवाब नहीं किया, कुछ नहीं पुछया। बाकी योगी परीक्षा लेंदे ने अपने होमें दे विच आके, कई तरह दियां रिधियां सिधियां विखाउंदे ने गुरु नानक नूं, बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: उन्हां नूं प्रभावित करन दी कोशिश करदे ने, गुरु नानक साडे योग दे विच आ जाए, किन्ना योग फैल जाएगा, साडा मत फैल जाएगा। पार्थरी ने सवाल जवाब नहीं किया, क्यों? क्योंकि पार्थरी नूं इशारा हो चुका सी, बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: पहला योगी सी पार्थरी जिहड़ा गुरु नानक दी शरण विच पिया, बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: गुरु अंगद देव महाराज भाई लैणे दे रूप दे विच देवी दे चाले जांदे हन, संग लैके जांदे हन। चोजी प्रीतम, रस्ते विच की सुनिया गुरु नानक दी महिमा, क्योंकि ये दर ऐसा है भाई,

गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं, अपने आप को गुणी समझकर कीर्तन न कर, मुझ में गुण है। और मुझे याद है एक बार मैं वैंकूवर बाहर गया तो एक रागी जत्था आया, वो थे रबाबी। अब वो रबाबी लोग जो होते हैं वो तो कहते हैं जब उनका बच्चा रोता है तो वो भी सुर में रोता है। भाई मर्दाने के खानदान से रबाबी लोग, लेकिन इतना गुण परमात्मा ने दिया, लेकिन अहंकार आ गया तो हम लोगों के सिवा और कोई गा ही नहीं सकता। सत्य बलवंडे ने भी अहंकार किया था। हम ना कीर्तन करें तो कोई गुरु नानक को पूछने वाला थोड़ी था। तो वो कहने लगे हमारा कीर्तन उनके बाद में था, तो वो कहने लगे कोई है माई का लाल जो हमारे जैसा कोई शब्द पढ़ सके, जैसा हमने राग गाया कोई गा सके। तो हम पीछे बैठे, मैंने कहा भाई ये कीर्तन है, ये कोई दंगल थोड़ा ही है। एक बार प्यार से बोलिए, ये दंगल नहीं है, यहां कुश्ती नहीं होती। यहां तो जैसे जैसे इंसान में गुण भरते हैं वैसा वैसा इंसान नीचा होता है, निम्रता में आता है। जो यहां भी गुण गाकर अहंकारी हो गए तो फिर निम्रता कहां आएगी, बाहर दंगल में आएगी। यहां तो निम्रता सीखनी है। जितना जितना सेवा की गुरु अंगद देव जी ने, उतने निम्रता में भरते गए। जैसे जैसे गुरसिखों ने गीत गाए वैसे वैसे निम्रता आती, नीचे होते चले गए।

सतगुरु गुरु गोविंद सिंह साहिब जी दे अनन प्यारे सिख कथन करदे ने, अगर तेरा दिल पवित्र है ते वाहिगुरु पारब्रह्म परमेश्वर तेरे अंदर वसदा, ते जे तेरे नेत्र साफ हन उन्हां विच ज्ञान दी दृष्टि है, मंदर वल वेख, मस्जिद वल देख, चर्च वल देख, इमाम शाफे वल देख, सारे जगह ते तैनु ओ व्यापक मौजूद नजरी आएगा, क्योंकि सारा संसार एक दी उपज है, एक माता पिता दी होंद है।